जंतु भीरि रहाओ साहस तम नयन नन नयन है तू ही कहो सहस मूर्त न एक तो ही साहस पद विमल नान एक पद गंधवे न सहस भगम दिव चल तो मोही समय जूत जूत है सोए दिदय चानन समय चरण होए गुरु साखी जूत प्रगट होए जो दि भाव है सो आरती होई।

कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम आद जुगादी सगल भगत तां को सुख बिसराम। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम आद जुगादी सगल भगत तां कै सुख बिसराम। डंडौत बंदन अनकबार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। ना मैला ना धुंधला ना

सागल समगरी तुम्हारा सूत्र पारी तुम ते हो सो आज्ञा तुम्हारी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुम्हारी।

काम क्रोध नगर पहु परया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लेव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर साधना जान्या तनंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुभै दुख पावै जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर नाम सुमाने दुख जन्म मरण पहु खंडा हे अपना सी प्रख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह मंडा है हम गरीब मस्किन प्रभ तेरे हर राख राख बडबड्डा है जन नानक नाम उधार टेक है हर नाम ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजमा

तनुमन धन ग्रह सोपु शरीर सोई सुहागण कह कबीर। गौरी कबीर जी बिखे जा।

गौरी कबीर जी। जह सिर रच रच वाद तुपाक, सु सिर चुंच सवारिह काग। इस तन थन को काग रुभैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया रहा। कहत

0: जन्म मरण कट प्रमगत पाई रहाउ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छड़ाई। अमृत नाम
1: जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपनम। सतगुर कीनो पर उपकार, काट लीन सागर संसार। चरना कमल सुन लागी प्रीत, गोबिंद बसे नित्ता नित चीत। माया तबत बुझिया अंग्यार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जात देखो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई। जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज, करी कबीर को स्वामी गरीब नवाज। जल है सूतक, थल है सूतक, सूतक उपत होई। जन्म सूतक, मुगे फुन सूतक, सूतक परज बगोई। कहो रे पंडिया कौन पविता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ। नैनो सूतक, बैनो सूतक, सूतक सर्वनि होए। उठत बैठ सूतक लागै, सूतक परे रसोई। फासन की विद सब को जानै, सूतक की एक कोई। कह कबीर राम रदे बचार, सूतक तिन्ने ना होई गौड़ी। झगड़ा एक नबेरू राम, जो तुम अपनो जन सु काम रहाओ। एह मन बड़ा के जा सु मन मान्या, राम बड़ा के राम जान्या। ब्रह्मा बड़ा के जास पाया, वीर बड़ा के जहां ते आया। कहे कबीरा हो प्या उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। रा गौड़ी चेती देखो भाई, ज्ञान की आई आंदी। सबे उड़ानी परम के टाटी, रहे न माया बांधी रहाओ। दुचित्ते की दो थून गरानी, मोए बिलेडा टूटा। तिसना सान परी तरी ऊपर, दुर्मत भांडा फूटा।

गौड़ी गज नव गज दस गज इक्कीस प्रिया एक तनाए सार सूत नवखंड बहत्तर पार लगो अधिकाई गए बनावन माहो कर सोडे जाए जलाहो रहाओ गजी ना मिनिया तोल ना तुलिए पाचन शेर अडाए जो कर पाचन बेग न पावै चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कते आई सूते कुंडे पींगे पुरिया चलियो जला हो रसाई सुसी नली तंत नहीं निगसी नत रही उर्जा।

जब लग जुगत न जानिए भाओ भगत भगवान। संपै देखना हर खिया बिपत देखना रोए, जो संपै तू बिपत है बिद ने रचया सो होए। कह कबीर अब जानिया संतन दे मजार, सेवक सो सेवा भला जय कट बसे मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच लै जिन पार, बिरख बसेरू पंख को तैसो इहो संसार। राम रस पियारे जह रस बिसर गए रस और रहाओ, और मुए क्या रोइए जो आपां थिर ना रहाए। जो उपजे सो बिन सहाय दुख कारे रोवे बलाए।

यहाओ कहे कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक अदार नाम नारायण रसना राम रवि जय रा गौड़ी यारवी।

गौड़ी लख चौरासी जी जून मैं परमत नंद बोथा कोरे भगत हे अवतार लियो है भाग बडो बपरा कोरे तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन अकार दसो दसनाहे तवे नंद कहाँ थोरे रहाओ संकट नहीं पर

लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए के जन्म गवायो, चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पैर अधर्म है रहते, तिनका नहीं पत्यारा, चेत सचेत चेत होए रहो, तौलै प्रगास उजारा।

जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर महें डर है समा।

रस पहचानिया, ए रस साढ़े ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं भावा। लल्ला ऐसे लेमन लावे, अंत न जाए।

न होई, खोज बूझ जो करे बेचारा, तो पवजल तरत ना लावे बारा। ससा सो ससे सवारे, सोए सही संदेह नवारे। अल्प सुख साढ़ परम सुख पावा, तब तहे ओ कंत कहावा। हाहा होत होए नहीं जाना, जबे हुए तबे मन माना। है तो सहे लखे जो कोई, तब ऊहे ओ यो न होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बहुत सोग। लखवीं बरसो जो लो लावे, सोग मिटे सवे सुख पावे। खखा खिरत खबत गै केते, खिरत खबत अजू नह चेते। अब जग जाना जो मना रहे, जह का बिसरा तै थिर लहे। बावन अखर जोरे आन, सक्या ने अखर एक पहचान। सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सो अन पर है। पंडित लोग हैं को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत्व विचार।

कहे कबीर उरवार न पार, साधक सिद्ध लखे जो पेओ, आपे करता आपे देओ, थिंती अमावस मह आस नवारो, अंतर जामी राम समार हो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपो शब्द तत् निज सार, चरण कमल गोबिंद रंग लागा, संत प्रसाद पय मंदिर मिलो, हर कीर्तन मैं आंदन जागा रहाओ, परवा प्रीतमा करो विचार, कट मैं खेले अकट अपार, काल कल्पना कदे न खाए, आज पुरख मैं रहे समाए, द्वितीया दुह कर जाने अंग, माया ब्रह्म रमे सब संग, नाम बड़े न ना घटता जाए, अकुल निरंजन के पाए, तृतीया तीने सम कर ल्यावे, आनंद मूल परम पद पावे, साध संगत

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जीओ के साथ बार बार हर के गुण गावो गुर गंभीर दिसु हर का पाओ रहाओ आत करे भक्त आरंभ काया मंदिर मनसा थम्भ अनुस अखंड सुरहि जाए तो अनहद बीन सहज में बाए सोमवार सुसमर्थ चरै चागत बेग सगल बेखरै बाणी रोक्या रहे द्वार तो मन मतवारो पीवन हार मंगलवारे लै महीत पंच चोर की जाने रीत कर सोडे बार जिन जाए नात्र खरा रिसे खाराए बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मैं हर का बास गुरमिल दो एक सम तरै उर्द पंकला सुधा कराए

तो जी हर अनक अनेक अनंताय, तेरी अनिक तेरी अनिंग करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक तेरे अनेक पड़े बो सिमर साह जी, कर क्रिया खट कर्म करंताय, से भगत पले जन नानक जी, जो भावे मेरे हर भगवंताय।

0: दीना नाथ प्राण पत सारी, खान पान मीट रस भोजन, अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उदरे, होर माया मगन चले सब डारी। खान पान मीठ रस भोजन, अंत की बार होत कत खारी। नानक संत चरण संग उदरे, होर माया मगन चले सब डारी।
1: ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंद्र मनिंद्र खोजते गोरख, तरण गगन आवत पुन तावत। सिद्ध मनुख है देवर दानव, एक तिलता को

राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाहीं अनल अगम जैसे लहर मैं उदक जल केवल जल माही जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल गम जैसे लहर मैं उदक जल केवल जल माही माधवे क्या कही है भ्रम ऐसा

0: असंख नाम असंख थाव अगम अगम असंख लोए
1: असंख है सिर भार होए अकरी नाम अकरी साला अकरी ज्ञान गीत गुंगा
0: अकरी लिखन बोलन बा।

0: प्रसाद चकर चैन और वरण जात और पात नहिंजे
1: रूप रंग अरेक पे को कह न सकत के
0: अचल मूरत अनुपम प्रकाश अमितोज कही जय
1: ओट इंद्र इंद्राण सहाय सहान करी जय
0: त्रे पवन महेप सुर नारे असुर नेत नेत बन त्रिण कहत
1: तब सब नाम कथे कवन करम नाम बन्नत सुमत
0: भुजंग प्रया चंद नमस्त्वंग काले नमस्त्वंग कृपाले
1: नमस्तन अरूपेण।

0: समस्ती स्वरूप है,
1: भंगी परमाते समस्ती प्रभुते,
0: कलंकन बनाने कलंकी स्वरूप है,
1: नमो राज राजेश्वरम परम रूपे,
0: नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्ध,
1: नमो राज राजेश्वरम परम प्रीते,
0: नमो शस्त्रपाणे नमो अश्रुमाणे,
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता,
0: अपेक्षीय परमी अभोगी अभुक्ते,
1: नमो जोग जोगेश्वरम परम जुक्ते,
0: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे,
1: नमो प्रेत प्रेत देवे।

0: भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता
1: चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
0: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र परती
1: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए
0: चाचरी चंद ना सत्रा ना मित्रा ना परमंग ना पित्रा
1: ना कर्म ना काय अजन्म ना जाए
0: ना चित्र ना मित्र परे है पवित्र
1: प्रभूत करने के अश्वत भरने के सर्व भरने के ब्रह्म सब उपे के अनुप अनुपे के चित्रण महीने के अधीने के पाक बैब है के गैबुल गैब है के कारण कुनिंद है के रोजी दहिंद है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशे।

0: के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के आकल आला में के साय कला में हमेश्वर सलाम में सरी खुदमदा में बलिंदुल मकाने जमीन उल जमाने हरिफुल आजी में रजाय यकीने अजीजुल निवाज है गनी मुल्क राज है प्रभुक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है समस्त पराज है सदा सर्व साज है निर्वाह स्वरूप है गाज है अनूप है अनंगी आना में त्रिभंगी त्रिका में सुबह सर्प आगे सुसर्पा अनुरागे के नरकम प्रनाश है पृथ्वी प्रवास है प्रभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अनाश है उदास है अदंध है अबंध है न चिंता है सुनित है अलिख है अधिक है असंभ है अगंभ है अनिल है अनाद है चरपर छंता प्रसाद सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं जूता सर्वं मूता अनंगं स्वरूपे अपंगं प्रभूते अगा स्वरूपे निर्बाध प्रभूते नरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न दाते न माते न जाते न पाते सदैवं प्रभा है अजय है अजा है
1: भगवती चंद्रय प्रसाद की जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है
0: हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है
1: साहिब दिमाग है के हुस्नल चराग है
0: के कामल करीम है के राजक रहीम है
1: के रोजी दहिंद है के राजक रहिंद है
0: करीमुल कमाल है के हुस्नल जमाल है
1: नीमुल खिराज है गरीबुल निवास है
0: हरीफुल शिकान है रे आसल फिकान है
1: लंकर परनास है समस्तुल निवास है
0: अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है
1: समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है
0: के नरकम परनास है बैतुल निवास
1: सरबुल गवन है के हमेशुल रवन है
0: तमामुल तमीजा समस्तुल ईजा
1: परम परम ईस है समस्तुल अदीस है
0: अदेशुल आलेख है हमेशुल अपेख है
1: जमीलुल जमा है अमीकुल अम्या है
0: करीमुल कमाल है के जुर्रा जमाल है
1: के अचलत प्रकाश है के अमितो सुभाष है
0: के अजब स्वरूप है के अमतो प्रभूत है
1: के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है
0: के अचलंग आनंद है के अमतो अपंग है
1: मधुपार छात्र प्रसाद मन मन प्रणाम गुण गण मुदा
0: हर भर अगंज हर नर प्रपंज
1: अनगन पर नाम मुन मन सला
0: हर नर अखंड भर नर अमंड
1: अनभव अनास मुन मन पर का
0: मुन गन पर नाम जल थल मुदाम
1: अंचिज अंग आसन अपांग
0: उगमा पार गत में तो उदार
1: जल थल अमंड दिस विश अबंड
0: जल थल महंत दिस विश बेअंत
1: अनभव अनास ते तट तुरा
0: आजान बाहु एक सुदाहु
1: ओंकार आद कथनी अनार
0: खल खंड ख्याल गुर भर अकाल
1: कर कर पर नाम चित चरण ना
0: अंचिज गाता जिज बात
1: जज गात अनरंज पात
0: अंटुंट पनार अंटठ्य पार
1: अडीट तरम अत डीट करम
0: अनभरना अंत दाता महंत
1: बोल मना चंत्र प्रसाद करना।

0: सरबन पर है सरबन कर है
1: सर्पास्या है सर्वनाश्या है
0: करुणाकर है विशंबर है
1: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
0: ब्रह्मंडस है कल खंडस है
1: पार्थे पर है करुणाकर है
0: अजपा जप है थपा थप है
1: अक्ता कीर्त है अमृता अमृत है
0: अमृता मृत है करुणाकृत है
1: अक्ता कीर्त है तरनीत्रित है
0: अमृतेश्वर है परमेश्वर है
1: अक्ता कीर्त है अमृता अमृत है
0: अजपा कृत है अमृता अमृत है
1: निर्णायक है खलकायक है
0: विशंबर है करुणालय है
1: निपनायक है सर्पायक है
0: पंजन है अर्गंजन है
1: निपतापन है जप जापन है
0: अकलन कृत है सर्वाकृत है
1: कर्ता कर है अर्ता हर है
0: परमात्म है सर्वात्म है
1: आत्म बास है जास के जास है
0: जंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्र
1: नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्र
0: नमो अंधकार नमो तेज तेज
1: नमो बिंद्र बिंद्र नमो बीज बीज
0: नमो राजसन तामसन सात रूपे
1: नमो परम तंतंग तंतंग स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो मंत्र मंत्रे नमो ज्ञान ज्ञाने
0: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो पोज पोजे नमो पान पाने
0: नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे
1: नमो इंद्र इंद्रे अनादंग प्रभुते
0: अलंकार रूपे अलंकार अलंके
1: नमो आसे आसे नमो बांक बंके
0: अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे
1: त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे
0: एक अचरी छंद अजय अलय अभय अभय
1: अबू अजू अनास कास
0: अगंज अपंज अलक अपक
1: अकाल दयाल अलेख पेख
0: अनाम अकाम अगा अडा
1: अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी
0: न रागे न रंगे न रूपे न रेखे
1: अकर्म परम अगंजे अलेखे
0: जंग प्रया छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परना से
1: अगंजुला नामे समस्तुल निवासे
0: कामन बेबूते समस्तुल स्वरूपे
1: कर्म परनासी सुतर्म प्रभुते
0: सदा सच सचदानंद सत्रन परनासी
1: करिमल पुनिंदा समस्तुल निवासी
0: अजाय विभूते गजायब गनी में
1: हरियं करियं करिमुल रहीम में
0: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते
1: शाम्बम शुभम सर्वदा सर्व

0: संगे अपंगम प्रभुते।
1: वाहे गुरु जी का खालसा,
0: वाहे गुरु जी की फतेह।
1: प्रसाद सोई एकोंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं श्रावत सुद समो सिद्धान के देख फिर यो कर जो उपजति के
0: सोर सुरार्दन सुद सुधादत संसभु अनेक मति के
1: सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के
0: श्री भगवान की पाए कृपा उनते एक रति बिन एक रति के
1: सुरंग सवारे
0: को तुरंग कुरंग से गुदत पवन के गौन को जात निवारे
1: बिचारे
0: पे तो कहा प्रभुपति अंत को नागे ही पाए पधारे गुंजत गोड़ गजान के सुंदर हिस्सा दी है राज हजारे
1: भगवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
0: श्रीपा श्री भगवान पजेब ने अंत को अंत के ताम सिदारे वेद पुराण कदेव कुरान जमीन जबान सबान के पेख है श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख लेना हलेंगे श्री पा श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहाँ निदान चलेंगे तोरा दे समलेंद मवासन माते गजान के मान मलैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक ने एक सो एक दवैया जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे सा समूह प्रसन्न फिर जग सतर सवे अब लोग जपेंगे
1: राजा
0: जो
1: लोग को राज करेंगे
0: को स्वयं साज भरेंगे ये नर श्री पद के प्रस है पग ते नर फेर न दे तरेंगे
1: ना
0: फिर लिए सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो साथ को सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो काहू लिखो रवाची दिशा में काहू पिशा को शीश निभायो गुर क्रिया और जो सभी जाग श्री भगवान को वेदना पायो
1: भूतान को पूजते हैं।

0: तब चंदन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करता रा पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है हुजो सदा हमारे पच्छा श्रीयस तुझू करे और अच्छा दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दसकंता काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन का सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा
1: जमन का सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा
0: सब जगत बनायो देव दैत्य छन जायो
1: आद अंत के अवतार सोई गुरु समझो हमारा
0: नमस्कार तिस ही को हमारी।

0: आप अपनी बुध है जेती बनत पेन पेन तो है देती
1: संसारा
0: एक है रूप नूप स्वरूपा रंग पे और आप कही भूपा
1: कहो
0: फूल राजा है बैठा कहो उस मठ में संग करे।

0: ग्रंथ करा पूरन सुब्रता
1: किवत सकल देखो आता दुष्ट किम को शकता
0: श्री अस्तु जप दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला
2: मन वाचित फल पावी सुई दुख ना।

0: मुक्त ना होत है कोई पूछो विवेकियां जाए।
1: अनेक जोनी परम मावे बिन सतगुरु मुक्त न पाए।
0: फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए।
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए।
0: आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची वाणी।
1: वाणी त गावो गुरु केरी वाणी आसर वाणी।
0: जिनको नदर कर्म हो वह हृदय तिना समाणी।
1: पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपियो सारिंग पाणी।
0: कहे नानक सदा गावो यह सच्ची वाणी।
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है वाणी।
0: वाणी ता कच्ची सतगुरु बाझो होर कच्ची वाणी।
1: कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आंख वखाणी।

0: नानक शब्द तन है हीरा जित जड़ा।
1: सिर सख्त आप उपाय के करता आपे हुकम वर्ताए,
0: हुकम वर्ताए आप वेखा गुरु के सह पुचाए।
1: तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए,
0: जिसनो आप करे सो होवा एक सेव लिवलाए।
1: कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए।

0: ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए। हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुर न तृष्णा लागे आए। कह नानक होर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में है आया।
1: आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया।
0: गुर प्रसादी पूज्या ता चलत हुआ चलत नदरी आया।
1: नानक का मूल रचा जोत रखी ता तू जग में आया।
0: मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया। गुर चरण लागे दिन सपागे आपना।

0: हर बिन अवर न देखो कोई,
1: हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया।
0: ए विश संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया।
1: गुर प्रसादी बुझे आ जावे का, हर एक है हर बिन अवर न कोई।
0: कह नानक ए नेत्र अंध से, सतगुर मिले दिव दृष्ट होई।
1: ए स्वर्णो मेरे हो, साचे सुने नो पठाए,
0: साचे सुने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी।
1: जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस माणी।
0: सच अलख विडाणी, ताकि गत कही न जाए।
1: कह नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो साचे सुनने नो पठाए।
0: हर जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया।
1: वाजा पवन नो द्वारे, प्रकट किए दसवा गुप्त रखाया।
0: गुरुद्वारे लाए पावनी, इतना दसवा द्वार दिखाया।
1: अनेक रूप नाव नाम ने तिसदा अंत न जाई पाया।
0: कह नानक हर प्यारे, जियो गुफा अंदर रख के, वाजा पवन बजाया।
1: साचा सोहला साचे कर गावो,
0: गावो ता सोहला कर साचे, जिथे सदा सच त्यावे।

0: जल में दल डारे
1: खंड खंड प्रचंड पहाड़न पूरन प्रेम की प्रीत संपार
0: न पाए सके पद्मापद वेद कतेब अपेद उचारे
1: रोज ही राज बलोकत राज करो ग्रहण की रोजी नाटारे
0: कीट पतंग कुरंग भुजंगम पूत पविख भवान बनाए
1: देव देव सपे अमेर न फेर देखियो परम सो परमाए
0: वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ नाए
1: पूरन प्रेम प्रभाव बिना पास्यों किन सिर पद्मापद पाए
0: आद अनंत अगाध द्वैक सुपूत पविख भवान अपै हैं
1: आत्महीन अनात्मा पदाग दोग शिद्र शय हैं
0: लोगन के करता हरता जल में थल में परता प्रभ वह हैं
1: दीन दया दया सुंदर श्री पद्मा पते हैं
0: काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न पै हैं
1: देवहीन स्नेह सबोतन ने बरख तगे अशय हैं
0: जान को दे अजान को दे जमीन को दे जमान को दे हैं
1: आहे को डोलत है तुमरी शुद्ध सुंदर श्री पद्मा पतले हैं
0: लोगन ते अर्सोगन ते जल जोगन ते बहुपांत बचावे
1: सतरन एक चलावत काव तो तन एक न पगन पावे
0: रखत है अपनो कर दे कर पाप सबूना पेटन पावे
1: और की बात कहा के तो सो सो पेठी के पट बीच बचावे
0: जज पुजंग सुदान देव पेव तुम्हें सब ही कर त्यावे
1: ओम कास पताल रसातल जज पुजंग सब सिर नियावे
0: पाए सके नहीं पार प्रभाहों को नेधी ने ते बेद बतावे
1: ओज थे के सभी खुजियां सुरहार परे हर हाथ नावे
0: नारद से चतुरारन से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो
1: वेद कतेव ना वेद लिखे सब हार परे हर हाथ ना आयो
0: पाए सके नहीं पार मापत सिद्ध सनात सनंतन त्यायो
1: जान तरो ते को मन में जे को अमितोज सबे जग शायो
0: वेद पुराण कतेव कुरान अपेद निर्पान सबे पछारे
1: वेद न पाए सके अनपेद को खेदत है अनशेद पुकारे
0: राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग तिहारे
1: तिन ही कुलतारे
0: तीर्थ कोड किए स्नान दिए बोदान महाव्रतारे
1: देश प्रयोग कर पेस्त पोतन तेस्तरे नाम मिले हाँ।

जैसा मानिया हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संघासन सोया सुपने पया पखारी, अशात राज बिसरत दुख पाया सो गात पई हमारी। राज प्रयांग प्रसंग जैसे हैं अब कश मरम जनाया, अनेक कटक जैसे फूल परे

हित मंगल राजा राम राय को रहाओ ऊतम धीरा निर्मल भाती तो निरंजन कमला पाती। रामा भक्त रामा नंद जान है पूर्ण परमानंद बखाना है मदन मूर्त पै तार गोविंद सैन भणै पज परमानंद पीपा। कायो देवा कायो देवर कायो जंगम जाति कायो धूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती। काया भाव खंड कोसते नाभ निध पाई ना कछ आए वो ना कछ जाए वो राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवय परम तत् है सतगुरु होए लखावे। धन्ना गोपाल तेरा अर्ता जो जान तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता रहाओ। दार सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया चादर निका अनाज मंगो सत सिका गो पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी संगेरी करकी गीहन चंगी जन धन्ना लेवै मंगी। जत श्री महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार

बिन गाहक में काका खा रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन विकानो लाखा मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिलया हीर प्राखर हाओ मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कार रतन ना लाखा ते उजड़ परमुए गवारी माया वंग विक चाखा।

करो प्रभु स्वामी हम परे भाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आग बखाना है तुम वड अगम वड पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी पाखाण डुबता रखा। जय श्री महला चौथा। हम वारक कछु न जाने गत वित तेरे मूर्ख मुग्ध याना। हर कृपा तार लीजे हर कृपा तार दीजे मत उतम। कर लीजे मुग्ध सियाना मेरा मन आलसिया उगलाना। हर हर आन मिलायो गुर साधु मेरे साधु कपट खुला ना रहाओ। गुरबिन गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे ही रहे। मेरे प्रीतम नाम पुराना मेरे नावे मर जाइए मेरे ठाकुर। जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी। तिन दुर्भाग पुराना तिन हम चरण सरे वे खिन खिन। तिन हर मिठ लगाना हर हर कृपा तारी में ठाकुर। जन विचरिया चरी मिलाना तन धन सतगुर जिन नाम दृढ़ाया। जन नानक तिस कुरबाना। जय श्री महला चौथा। सतगुर साधन पुरख वट पाया। हर अस ग्रस खबला गवाओ माया भयंग ग्रसवे प्राणी। गुरु वचनी विसर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लागवा। हर किए पत पवित्र मेरे साथ।